अपना है जलवा जलवा जलवा जलवा यहाँ बिछाए वहाँ बिछाए जनता के वोट जम कर पाए ये बंगाल में जलवा जलवा जलवा जलवा

मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर निश सुनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें।

अपना है जलवा जलवा जलवा जलवा, यहाँ बिछाए वहाँ बिछाए, जनता के वोट जम कर पाए, ये बंगाल में जलवा जलवा जलवा जलवा।

0: के स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे।
1: That's right.
0: 50 शेयर्स खरीदूं या 5,000, ब्रोकरेज इज
2: जस्ट 20 रुपीज।
0: आपके आसमान से टपक पड़े
3: स्काई से। HDFC Sky, all in one investment app.
4: Fixed brokerage on stocks and F&O. HDFC Sky. Download today. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.

0: sorry.
1: अपोजिशन को मिला हलवा, हमारा चल गया जलवा। अरे यहाँ भी जीते वहाँ भी जीते, हम सारे बंगाल में जीते हैं, बंगाल में जलवा जलवा जलवा।

0: प्रेजेंटेड बाय पारुल यूनिवर्सिटी यहाँ पॉसिबल है।
1: को पावर्ड बाय
0: पैनासोनिक एसी इंडिया का कैप्टन कूल। को पावर्ड बाय जिंदल स्टेनलेस।

0: मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व तो है कि हर निश सुनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर निस सुनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.